नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: BFBS गोरखा रेडियो।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हमा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा सील
3: टाइट वेरी टाइट